0: मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
1: Fresh FM has been your voice in the community for over 30 years, sharing local stories, diverse voices, and music you won't hear anywhere else. If you love what we do and want to help us keep the airways alive, consider making a donation. Every dollar counts, and donations over $5 are tax deductible. Head to freshfm.co.nz and click on Sponsor Us to support your local community access radio station today. Fresh FM, amplifying the people of Te Tau Ihu.